सुख शांति नहीं। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल कृष्ण जय।